0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अपने ग्रह विखे प्रभात फेरी सजन वास्ते नाम दर्ज कराओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: श्री अकाल जी। बाबा जी साडा भी नाल।
0: हाँ पुत्त, तेरे घर से जरूर आवांगे।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement, where Bhangra, electronic beats, and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
5: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
4: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
5: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
7: 24 hours a day. Sunrise Radio.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
2: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
1: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
2: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ
4: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
3: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है
4: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
5: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735. 043

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
5: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
5: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August, at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement, where Bhangra, electronic beats, and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
3: तेरी गलियां
4: कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
4: चाचा, केड़ा चाचा?
5: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले, जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना, कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
6: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: 07744 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group, quality homes from a landlord you can trust.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
4: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 935 ਟੈਲੀਫੋਨ 0147 4884 9935।
3: Have you noticed the way fun shout at football matches?
5: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 100.6 एफएम और 100.32 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट योर्कशायर में सुनाई देती है और अगर डीएबी पे आप सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड कीतली इल्कली स्किप्टन लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन एकरिंगटन मिल्टन कीन्स और बहुत जल्द डर्बी में भी सुन पाएंगे आप और आप अगर एप्पल एप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm पर और आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलामुअलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे सबसे पहले अभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया अभी बहुत शुक्रिया आपका तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं नंबर होगा 01274306666 तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं तो एंजॉय कीजिएगा हिट ऑफ द आवर को
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 Call 01274-056-014.

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां हमें बता रही हैं 11:15, यानी कि 11:15। तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा जो गुलाम भाई का फेवरेट गीत है, उन्हें बहुत पसंद है, उनके नाम करेंगे। और उसके साथ साथ इसी गीत को पसंद करते हैं जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाल साहब, मुनीर साहब, वसीम साहब, इमरान साहब, मुजाहिद साहब, अल्लाह दिता साहब, हुमैर साहब, बाबर साहब और इफराज साहब, उनके नाम भी करेंगे। और के साथ साथ हाजरा जी आपके नाम भी करेंगे। और तारिक जुल्फी साहब, आपने फ़ोन करना शुरू कर दिया जनाब, आपके नाम भी करेंगे। और आपकी जन्म से आपके तमाम दोस्तों के नाम करेंगे, स्पेशली जनाब हीरा खान साहब के नाम करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत आप सभी दोस्तों के लिए।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, अभी आपने अनुजा पडवाल और उदय नारायण की आवाजों में बहुत ही प्यारा सुरीला गीत सुना। यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और जनाब हीरा खान साहब, फ़ोन करने का शुक्रिया। जनाब आपने कहा आप तमाम दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो आपके दोस्तों के नाम गीत करते हैं। और उसके बाद तारिक भाई BD8 से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद आपसे भी बात हुई, अच्छा लगा। आपके नाम भी गीत करते हैं। बीच में कमर्शियल आएगी, कमर्शियल के बाद जो गीत होगा वो उसकी बात कर रहा हूँ जनाब। और उसके बाद हमें शाहिद भाई जेल वाले, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी गीत होगा जनाब। और अब मलिक इम्तियाज़ साहब, आप फ़ोन कर रहे हैं जनाब, अच्छा लगा आप फ़ोन कर रहे हैं। तो आपके नाम गीत तो किया था, अब आने वाला गीत भी आप की जानिब से आपके दोस्तों के नाम होगा। मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अलादता, उमैर, बाबर, इफराज, उनके नाम भी और दीगर दोस्तों के नाम भी होगा। और जनाब आप सभी सुनने वालों के नाम भी होगा। तो चलते हैं कमर्शियल सुनते हैं, कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे प्यारा सा गीत, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रैडफोर्ड 7230 30।
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

प्यारा सा गीता प्यारी शायरी के साथ आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया। नहीद बहन, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ चाहता हूँ आपकी कॉल में ले नहीं पाया। और जनाब, अब जो गाना मैं पेश करने जा रहा हूँ अलका याग्निक की आवाज़ में है, मेरा पसंदीदा गीतों में से एक गीत है ये भी। सोचा चलिए आपको ये गीत सुनवाई देते हैं। और उसके बाद प्यारी बहना जीत कौर, आपने भी फ़ोन किया, माफ़ चाहता हूँ आपकी कॉल भी नहीं ले पाया मैं, तो आपके नाम को पंजाबी का गीत बाद में ज़रूर करूँगा। फिलहाल आने वाला गीत जो है थोड़ा सैड गीत है, सोच भरा है, उम्मीद रखूँगा आप पसंद करेंगे। और

के बाद शाहिद भाई झेलों वाले आपने फिर फोन किया, शुक्रिया, आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को मुना जी आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे। बड़ा प्यारा गीत है, थोड़ा सैड है लेकिन शायरी बहुत प्यारी है, तो मन चाह रहा था इस गीत को सुनने का, तो मैंने सोचा चलिए ये प्ले कर देते हैं और आप सभी सुनने वालों के नाम भी कर देते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गीत को, अलका याग्निक की प्यारी सी आवाज़ में ये बहुत ही अच्छी शायरी वाला गीत आप सभी की नज़र।

0: क्या मिला सिला इश्क में, क्या गीत था। अलका याग्निक की प्यारी सी आवाज़ थी। यकीनन आप सभी ने इस गीत को एंजॉय किया होगा। और दोस्तों अब वक्त जो है ये कमर्शियल का हो चुका है, और कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है। और सदाबहार पुराना गीत मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम, और ग़ुलाम भाई आपके नाम, और नवीद भाई आपके नाम, और उसके बाद हीरा खान साहब आपके नाम, तारिक भाई बी डी एड से आपके नाम, वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपके नाम, तारिक जुल्फी साहब, और जनाब आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा। जितने भी दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो उनके नाम करेंगे रफ़ी साहब का बहुत ही प्यारा सुरीला गीत, आप सभी के नाम करेंगे। और खान भाई आपका सोच ही रहा था मैं, और आप का नाम मेंशन करने ही लगा था, आपकी कॉल आ गई जनाब, तो शुक्रिया खान भाई, आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं जनाब, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो हमें बता रही हैं 11:46 मान चाहते हैं 44 मिनट्स, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 11। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा है।

आपने रफी साहब की सदाबहार आवाज में आपने सदाबहार ये गीत सुना, यकीन आप दोस्तों एंजॉय किया होगा। गुलाम भाई फोन करने का शुक्रिया, आपको गीत अच्छा लगा, 10 बार आपके नाम किया जनाब। और अब जो प्यारा सा गीत है पेश करने जा रहा हूँ गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम, और इसी गीत को आमरीन साहब आपके नाम करेंगे और यही गीत तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना समला रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। कोशिश होगी इस आवर में आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। तो जनाब जो खबरें हुई तो लियाकत भाई आपका फ़ोन आया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम थोड़ी देर में गीत करते हैं। फिलहाल दोस्तों चलेंगे हिट ऑफ द आवर की जानिब। दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप तमाम दोस्तों के नाम करते हैं जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद मिलते हैं। इंजॉय कीजिएगा इस हिट ऑफ द आवर को।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए पेश किया था, और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:13, यानी कि 13:12, और कमर्शियल का टाइम हो गया है। माजर चाहते हैं जीत कौर बहना, आपने फिर फ़ोन किया, फिर बात नहीं हुई अपनी बहन से। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद ज़रूर बात होगी। मोहम्मद बशारत भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी गीत करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा मीडियम सा गीत है जनाब गुलाम भाई और लियाकत भाई, आपके नाम भी करेंगे, शुक्रिया फ़ोन करने का। तो इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे और आजरा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
4: For your family treat this summer,
5: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
4: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
5: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
4: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
5: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

अभी आपने लता जी और शबीर कुमार की प्यारी सी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। हान भाई आपने फोन किया, आपने कहा कि इस वक्त आपके साथ आपके जिगरी दोस्त हैं जनाब फारूक भाई, उनके लिए आप गीत सुनना चाहते हैं, तो आने वाला गीत आपके नाम करेंगे और नहीद बहन आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को सभी सुनने वालों के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: कमाल सानू और अलका यग्निक की आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में एक प्यारी सी कवाली सुनेंगे। और इकमाज फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी मसरूफ़ है काम में और साथ में रेडियो को भी सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इकमाज आप सुनना चाहते हैं मलिक इम्तियाज़ के लिए, वसीम के लिए, इमरान के लिए, मुजाहिद के लिए, अल्लाह दत्ता, हुमैर, बाबर और जनाब इफराज के लिए। तो शुक्रिया फ़ोन करने का, प्रोग्राम में शमूलियत का। और ग़ुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे। और ख़ान भाई एक बार फिर आपके नाम और आपकी जानिब से फारूक भाई के नाम। और इसी गीत को तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी करेंगे। और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

अभी आपने बहुत ही प्यारी सी कवाली सुनी, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय की होगी। और अब जनाब गाना तो हमने सेट किया था, लेकिन वो जो है वो निकल गया और अब हमें गाना फिर दोबारा से ढूंढना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा कौन सा गाना हमने जो है वो पिक किया था। तो एनीवे अब जो है वो हमें काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया, खान भाई आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। और हमारे दोस्त जनाब टॉम साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आप भी सुन रहे हैं इस वक्त और सबीना के साथ हैं और आप उनके लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं। तो आप दोनों के लिए मैं प्यारा सा गीत ढूंढ रहा हूं और वो क्योंकि सबीना ने कहा था कि पंजाबी का गीत सुनना है, लेकिन क्या है कि पंजाबी की अभी कवाली मैंने जो है वो प्ले की थी, इसलिए आप ऊपर से जो है वो पंजाबी का और गाना लगाएं तो कुछ सूट नहीं करता, इसलिए मैं कोई गीत ढूंढ रहा हूं, बातें भी कर रहा हूं साथ में और साथ में आप के लिए गाना भी ढूंढ रहा हूं। तो चलिए गाना ढूंढ लिया टॉम आपकी जानिब से सबीना के लिए ये प्यारा सा गीत, और आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा। इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं, नजमा सबा है, फत है, नाजिया है, हमीदा है, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा, आप सबके नाम करते हैं और इसके साथ साथ अमरीन साहब आपके नाम भी करते हैं और सभी सुनने वालों के नाम करते हैं। प्यारा सा गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। माजर चाहता हूँ टॉम साहब, जल्दी में ये गीत ढूँढा तो उम्मीद रखता हूँ आप इसे पसंद करेंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को सुना। उम्मीद रखता हूँ टॉम भाई आपको गाना पसंद आया होगा। शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। और दोस्तों, अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद फिर सदाबहार पुराने गीत की भी बारी आती है। तो हम चलेंगे जनाब आप दोस्तों के लिए कमर्शियल की जानब बढ़ेंगे और कमर्शियल के बाद फिर आप दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत चुनेंगे पंजाबी का, या कोई भी गीत होगा जो पुराना होगा वो आप दोस्तों के लिए पेश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब टाइम जो है वो चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि आपकी घड़ियां और हमारी घड़ियां हमारे दिलों की तरह मिली हुई हैं या कोई आगे पीछे हो गई हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:48, यानी कि 12:48। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गईं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है, सिर्फ 2 पौंड ना कन्स लाने ना 1 पौंड, छापां ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
1: ऋषि'स विजन प्रेजेंट्स Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, अभी आपने मुनीर हुसैन और मलका तरन्नम नूर जहां की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, फिल्म ही रांझा से लिया हुआ, और कुछ दोस्तों की पुरानी यादें ताज़ी हो गई हैं। जैसे लियाकत भाई ने फ़ोन किया आज और कहा कि जनाब मज़ा ही आ गया ये गाना सुन के, तो अच्छी बात है जनाब। अब चलेंगे अगले गीत की जानिब, और ये गीत भी मेरी जानिब से आप तमाम साथियों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। और ये गाना जो है इस आवर का आखिरी गाना है जनाब, क्योंकि इस घंटे का सफ़र भी हमारा और आपका जो है वो गुज़र गया। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता है और समझ ही नहीं आती जनाब कि इसको इतना तेज़ क्यों जा रहा है। समझ से बाहर है बात ये कि बरकैफ एक समझ आती है कि जनाब वक्त जो है उसका साथ निभाना चाहिए, वरना रह जाएंगे पीछे।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं जनाब। दो घंटों का सफर बड़ी तेजी के साथ गुजर गया, पता भी नहीं चला, और ये घंटा भी ऐसे ही जल्दी में निकल जाएगा। तो दोस्तों जरूर साथ निभाइएगा। अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। तो दोस्तों चलते हैं जनाब प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। प्यारी सी गज़ल आप दोस्तों की नज़र करना चाहूँगा ग़ुलाम अली की प्यारी सी आवाज़ में। जहाँ तक आप सुन रहे हैं कहीं भी हैं आपके नाम की ये प्यारी सी गज़ल, तो इन्जॉय कीजिएगा इसको। तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर की शक्ल में ये गजल आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर की शक्ल में गुलाम अली की प्यारी सी आवाज़ में बहुत ही प्यारी गज़ल आप दोस्तों ने सुनी, और इसके साथ ही अब वक्त जो हो गया है वो हो गया है टाइम चेक का। तो टाइम चेक करते हैं और उसके बाद दोस्तों कमर्शियल की जानिब जाते हैं। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करेंगे। हमें फ़ोन किया मोगल साहब लीड से, आपने शुक्रिया फ़ोन करने का, मज़ चाहते हैं, आपकी कॉल नहीं ले पाया हूं, अभी आप फोन करेंगे तो मैं आपकी कॉल ले पाऊंगा। तो चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही है 1:14, यानी कि 1:14 तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: For your family treat this summer,
5: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
4: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
5: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
4: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
5: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
6: My favourite radio station, Sunrise Radio.
7: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

जी दोस्तों, अभी आपने जल्दी में ये गीत मेरे प्ले कर दिया बगैर सोचे समझे। एनीवे, उम्मीद रखता हूँ कि आप दोस्तों ने इसको पसंद किया होगा। अब एक पंजाबी का गीत भी कह सकते हैं, छल्ला आपको सुनवाते हैं गुरदास मान की आवाज़ में। प्यारी बहन अजीत कौर आपके नाम करेंगे और अमरीन साहब आपके नाम करेंगे, मुगल भाई लीड से आपके नाम करेंगे, लियाकत भाई, खान भाई और जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम। और इस वक्त तीन शहज़ादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो ग़ुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे और दीगर जो दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं आप कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके नाम किया ये छल्ला गुरदास मान की आवाज़ में। तो इन्जॉय कीजिएगा जनाब।

दोस्तों, अभी आपने गुरदास मान की प्यारी सुरीली आवाज में प्यारा सा चल्ला सुना, और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी दोस्तों के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी जो हैं वो पसंद करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, और मेरा और आपका साथ आप थोड़ा ही रह गया जनाब, तकरीबन आधा घंटा, तो जनाब कोशिश कीजिएगा उसे निभाइएगा। और चलते हैं अब कमर्शियल की जानिब, कमर्शियल के बाद गीत सुने, और उसके बाद आप दोस्तों से मुलाकात होती है।

0: looking for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

अली बुखारी साहब आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आने वाला गीत आपके नाम और पाकिस्तान कश्मीर से जनाब चौधरी फरियाज साहब आपने फोन किया, शुक्रिया। आपकी जन्म से आपके तमाम दोस्तों के नाम ये प्यारा सा गीत, इंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों, उधर नारायण और अलका यग्नि की आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है जनाब जोहर की अजान का, तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान। उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और अब इसके साथ ही वक्त हो चुका है कमर्शियल का भी, तो चलेंगे पहले टाइम चेक कर लेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:44 से, यानी कि 1:44, तो चलेंगे जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा प्यारे दोस्तों के लिए, और जनाब चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान में इस वक्त सुन रहे हैं, उनके नाम अली बुखारी साहब, मुगल भाई रीड से, मुगल भाई पुराने गीत पसंद करते हैं उनके नाम, और लियाकत भाई खान साहब, और जनाब मलिक इम्तियाज़, इकमाज़, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अलदता, उमेर, बाबर इफराज और तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे, और उसके बाद स्पेशली जनाब ग़ुलाम भाई आपके नाम भी करेंगे, और हीरा साहब, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब और दीगर जो दोस्त हैं उनके नाम। हीरा साहब का नाम लिया, उन्होंने कॉल शुरू कर दी कि भाई सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे पता है सुन रहे हैं, इसलिए तो जनाब नाम लिया आपका। तो आप सभी दोस्तों के नाम ये गीत करते हैं, तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

जी दोस्तों, अभी आपने मोहम्मद रफी की प्यारी सी आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, मेजर यूसुफ साहब। फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके। और आप गाए बगाए फ़ोन करते रहते हैं और खैरियत का पूछते रहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बड़े प्यार करने वाले हैं और बड़े जो हैं केयरिंग करने वाले हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और किसी का मोहताज ना करे, लंबी उम्र दे, सेहत वाली दे। तो जनाब, अब मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पसीर हुआ ही चाहता है। ये 3 घंटों का सफ़र ऐसे गुजर गया, पता भी नहीं चला। और प्रोग्राम का आखिरी गीत जो है मेजर यूसुफ साहब आपके नाम करेंगे, और आपके साथ साथ शाहिद भाई जेलों वाले, उन्होंने फ़ोन कर रखा था, उनके नाम भी, और ग़ुलाम भाई का पूरा स्टाफ, उनके नाम भी, और ख़ान साहब भी फ़ोन कर रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे, और उनकी जानिब से उनके तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो जनाब, मुझे अमर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement, where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.
3: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

0: उम्मीद ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: बी पार्ट ऑफ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एट द रेशियल Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: My favourite radio station, Sunrise Radio.
6: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise Smart.

क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

खान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।